0: लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे पुणे केंद्र आहे। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत प्रभात वंदन।

0: पी सावळाराम यांचं गीत स्वरबद्ध केलं होतं दशरथ पुजारी यांनी, गायलं होतं सुमन कल्याणपूर यांनी. श्रोते हो, आज मराठी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमात सकाळी 9 वाजता सुमन कल्याणपूर यांची काही मराठी चित्रपट गीतं आम्ही प्रसारित करणार आहोत. आता थोड्याच वेळात म्हणजेच 8 वाजता समाचार प्रभात आणि 8:15 मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्रावरून, तर मराठीतून राष्ट्रीय बातमीपत्र सकाळी 8:30 आम्ही प्रसारित करू.
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो. और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं. तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे. 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी. केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन. और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता. अब समाचार.

0: विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा

0: यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड प्वाइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए।

0: वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय

0: भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं। ठीक
1: जी,
2: है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप

0: से सफल हुआ।
1: जी
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि
1: जी
0: एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया है।
1: जी
0: ठीक है, इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से
1: जी
0: जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं।
1: जी
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है।
1: जी
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको
1: जी
0: अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स।
1: ओके
0: तो इसमें पांच उपसमूह आते हैं।
1: जी
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं
1: जी
0: और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं।
1: जी
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या
1: जी
0: ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
1: जी
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है।
1: जी
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है।
1: जी
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं।
1: जी
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा
1: जी
0: आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है,
1: जी
0: ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है।
1: जी
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं।
1: जी
0: इसमें एनईपी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में।
1: जी
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
1: जी
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो,
1: जी
0: दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा

0: क्या है
1: ओके
0: और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है?
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं,
0: जी
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते हैं।
0: जी
1: जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप
0: जी
1: चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं
0: नहीं
1: समझ
0: सुनेगा
1: पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी,
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना
0: बिल्कुल
1: कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की।
0: जी
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है।
0: जी
1: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते,
0: जी
1: अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
0: जी
1: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
0: जी
1: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
0: जी
1: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल
0: इस्तेमाल करते
1: करते हैं।
0: हैं
1: तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की
0: जी
1: भाषा
0: जी
1: में,
0: जी
1: मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से। उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत।
0: जी
1: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
0: जी
1: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ? उत्तरी भारत में।
0: बिल्कुल
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
0: जी
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
0: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
1: जी
0: और समावेशी शिक्षा के बारे में
1: जी
0: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या-क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
0: जी
1: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
0: जी
1: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
0: जी
1: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
0: जी
1: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
0: जी
1: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
0: जी
1: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है,
0: जी
1: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
0: जी
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
0: जी
1: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
0: जी
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं,
0: जी
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये
0: जी
1: प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें।
0: जी
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
0: जी
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
0: रैंप होना
1: व्हीलचेयर
0: चाहिए
1: आसानी से पहुंच जाए,
0: जी
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
0: जी
1: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या? आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
0: जी जी
1: जब आप

0: मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल
1: जी
0: सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है।
1: बिल्कुल
0: गूगल पर
1: बिल्कुल
0: जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईटी एनसीईआरटी, आपको
1: जी
0: सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से,
1: जी
0: एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं। उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है।
1: जी
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है। और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात
1: जी
0: की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से
1: जी
0: हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी
0: की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी
0: है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए,
1: जी
0: आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए।
1: जी
0: साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और
1: जी
0: सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है,

0: इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा। इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए। ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमरीका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: यह मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताएं, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1 लाख

0: 94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रूपये होगी। मुंबई में 43.50 रूपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रूपये होगी। कोलकाता में 53.50 रूपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रूपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रूपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रूपये होगी।

0: से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगित तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मध्यम लहरी 378 अंश 78 मीटर्स अर्थात 792 किलोहर्ट्सवर तसंच न्यूज ऑन AIR या लाईव्ह स्ट्रीमिंग मोबाईल ॲपवर आकाशवाणीचे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को

0: बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lai held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides express interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development cooperation, health, education and energy. He said both sides underlined the importance of connectivity and agreed to work as quickly as possible towards completion of Kaladan Multimodal Transit Transport Project.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Mr. Misri said Myanmar sits at the confluence of India's neighbourhood first, Act East, as well as Mahasagar and Indo-Pacific policies. The President of Myanmar will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. He is also scheduled to visit the Light and the Lotus, Relics of the Awakened One exhibition at Rai Pithora Cultural Complex in the national capital. President Liang will travel to Mumbai tomorrow for business and industry interactions and site visits. The India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, has come into force today. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the CEPA will deepen the economic and strategic ties between the two nations. Addressing media in New Delhi, Mr. Goyal said that CEPA is not simply a trade agreement, it is a statement of civilizational trust.
3: I am confident that this comprehensive agreement will add a new momentum to our ties with Oman. From day one, India will secure duty-free access on 98% of Oman's tariff lines, covering over 99% of India's exports

0: मूल्यवृद्धि कारणं वर्तते। वस्तु सेवा करस्य सकल संग्रह विगत मासे 3.2% संवर्ध्य 1,94,000 कोटि रूप्यकाधिक अभवत्। विगते वर्षे मई मासे संग्रह 1,88,000 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। गतमासे केन्द्रीय वस्तु सेवा करस्य संग्रह 37,797,300 कोटि रूप्यकाणि अपि च राज्य वस्तु सेवा करस्य सकल संग्रह 45,343,100 कोटि रूप्यकाणि आसत्। एकीकृत वस्तु सेवा करस्य संग्रह 1,50,990,000 कोटि रूप्यकाणि आसीत्। सर्वोच्च न्यायालयेन 5 न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अनेन सहैव मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां संख्या 37 संवृत्ता। विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः सामाजिक संचार पटले अवोचत् यत् राष्ट्रपतिना मुख्य न्यायाधीशस्य परामर्शानन्तरं सर्वोच्च न्यायालये 5 नूतन न्यायाधीशानां नियुक्तिः कृता। अवधेयं यत् केन्द्र प्रशासनेन विगते मासे एकं अध्यादेशं प्रस्तूय विधो संशोधनं कृतमासीत्। हांगकांग नगरे आयोजितायां 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां भारतेन 10 स्वर्णपदकानि 5 रजतपदकानि 4 कांस्यपदकानि च समेत्य 19 पदकानि विजितानि। पदकतालिकायां भारतेन द्वितीयं स्थानं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 22वीं एशिया महाद्वीपीयायां अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप इति स्पर्धा मालिकायां 10 स्वर्णपदकानि समेत्य 19 पदकानि प्राप्तवद्भ्यः भारतीय दलेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तानि। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् इमे युवानः भारतस्य कीर्तिं विश्वस्तरे प्रापयितुं निरन्तरं प्रयत्नं कुर्वन्ति। एतेषाम् उज्ज्वल भविष्याय प्रधानमन्त्रिणा शुभकामनाः प्रदत्ताः इति वार्ताः।
1: वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ऍप सहित 558 kHz वर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजलेत। साहित्य सौरभ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री मार्ल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत

0: हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रूपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आए 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331048128, 2371711, 2371716 और 2331444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी,
1: नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी, जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीजों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको भी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताया, तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ORS का जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
0: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
3: हेलो
0: जी,
3: नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: मैं श्रीकांत डॉक्टर बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ा कौन है, बेचैनी लगती है, तो इसी स्थिति में क्या कर

0: चाहिए और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वाले ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वाले ने रखनी।
1: हाँ जी देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज है, सीओपीडी, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
2: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है।
3: देखिये, हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज्यादातर के अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसे कि नॉर्मल से अगर इतना दायरा तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
2: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
3: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीटवेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
2: और प्लेन्स के लिए?
3: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज्यादा होना।
2: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
4: जी, मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
1: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है। आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें, पंखा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उठती है तो उससे और ज्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
2: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
1: देखिए, लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं। माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियां बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि सिट्रोजीन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, और पानी आपको अच्छे से पीना और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं और हल्के रंग के हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको

0: इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना, ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ

0: ये लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक सबसे सिवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है तो ये आप सबसे सिवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का उसमें गिना
1: तो
0: जाता
1: है. अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत
0: उसमें आप फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है. इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा. हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल. तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है. जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है. बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है.
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं. जी महेंद्र जी.
2: जी कनक जी नमस्कार.
1: नमस्ते.
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार.
0: धन्यवाद
2: जी. मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है. दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है. ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है. ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है. लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसका जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है. बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है. कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है. इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहां कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं. बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं.
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें. और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें. नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती है. नींबू पानी
0: बिल्कुल.
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका मतलब क्या होता है?
3: देखिये, ज्यादा क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो ज्यादा हानिकारक होता है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है, जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं. तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया तो उसमें वार्म नाइट कर दे. तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट करें.
1: और वो भी खतरनाक
3: होता है.
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से. जी धर्मवीर जी.
4: हेलो नमस्कार जी. मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ. हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है, मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है

0: जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरतें हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआरएस घोल लेना ठीक है कि नहीं? और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी लें कॉफी पी लें तो बैलेंस बना रहता है, कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं?
1: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीजें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीजें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपके शरीर को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज के मरीज को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
2: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
3: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ, अमित उपाध्याय। मैं मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देख रहे हैं तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सके? जी
1: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड है क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं खास तौर से, वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें। और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमीडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
2: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग है, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
1: किसी भी क्रॉनिक डिजीज का अगर कोई मरीज है, कोई अस्थमा है, कोई सीओपीडी है, कोई हार्ट डिजीज का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड है। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं।
2: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
1: देखिए जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज्ड है तो आपको पेरिफेरल वेजो डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका, बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
2: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
4: हाँ जी
2: जी

0: कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ दीदी को भी नमस्ते सर। नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हाँ विजय कुमार स्वामी गांव बसवा तहसील शिवर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र बोल रहा हूँ मैं।
1: जी जी।
0: हाँ मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
1: जी,
0: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
1: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
2: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल। और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
1: घर का तापमान थोड़ा
2: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
1: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: आईएमडी जो
1: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहां पे बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा, हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पूरा जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं। आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सएप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया फेसबुक आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर पे है, जैसे कि वाराणसी से उन्होंने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है वहां से जो रीजनल डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इन्फॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहां जहां मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेषित करते हैं।
1: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: ठीक है, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का जमीन भी गर्म हो जाता है वहां से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे बचपन 9 बजे नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक तो अवॉइड करना,
1: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी का हरिद्वार से।
4: नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
4: जी, मैं रवि जवालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ, और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
4: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेशन मशीन से जट्टा कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोता उसको भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो

0: क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
1: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
0: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
1: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
0: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
1: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय, जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इंटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
0: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
1: बिल्कुल बहुत
0: का बच्चा
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल सुस्तीपन, दूध नहीं पीना, अगर बच्चा इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमीडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
0: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, वो कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशन पर गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
3: जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है, तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्यों? प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज्यादा पकड़ेगा क्योंकि वहां नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनिसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो वार्निंग अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो जो जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनिसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज्यादा लोग एंटिसिपेट करने के ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोपहर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन

0: समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed in